देता हूं। हे पूनंगयो मुरीवाई ओ पुड़ेओ हे मराई करो हे तो तोरो योरवन ओ ताकु कोरेरो माउरी केया हे कोरेरो यो तुमु देवारवार।